हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब रसूख। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बीफ है बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-5

65 60. मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है नरेंद्र की आवाज में आप सुनते ही रहना।

आवास में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा, हम आपको ले चलेंगे अनूप जलोटा जी की ओर। आज की इस भजन यात्रा के प्रोग्राम में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं खास सुंदर और सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में अब की बार पेश किया जा रहा है। मधु स्मिता की आवाज में आप सुनते ही रहना।

और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ब्रह्मा की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारीज की आवाज में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारी सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अपनी बार अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

पास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है शंकर महादेवन और लता मंगेशकर की आवाज में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अबकी बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार पेश किया जा रहा है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

मुझको छेड़ो, ऐसे ना मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के हैं राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल, होगा मिलना हमारा मुश्किल।

सुनने वालों, आज भी बृहस्पतिवार 25 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक काम खर्च के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है, कार का नंबर 0325656560। इसी तारीख नंबर पर सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और वो भी रेडियो SBS .nl वेबसाइट के जरिए। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हालांकि मौसम काफी गर्मी सा मौसम है लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम जो है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा बस पेश किया जा रहा है। कुछ सुनने वालों है जो इस गर्मी सा मौसम में कुछ ठंडी ठंडी पीना चाहेंगे तो उन सभी के लिए भी कुछ ठंडी ठंडी सब पेश किया जा रहा है। तो चले यहां से आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय या तो कुछ ठंडी ठंडी आपके लिए बस पेश किया जा रहा है इस गर्मी सा मौसम में। ओपनिंग सिलेक्शन आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में 9:09

और रेडियो SBS की सरिया किशोर एन लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की ये प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में सलमा आगा एन शैलेंद्र सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक को खबर की गई हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक सलमा आगा एंड शैलेंद्र सिंह।

तलमागा एंड शैलेंद्र सिंह के आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। अभी आपने सुना काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है, टेम्परेचर कहीं कहीं 35 डिग्री कहीं कहीं 37 डिग्री होने वाले है।

माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में नादान फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। नादान फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, जोर दूर से तार आ रहा है, कुछ बातें होते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा सुनने वालों बस ऐप पर रेडियो SBS का ऐप पर और तार द्वारा भी यही कहते हैं एट इस वारम बहुत गर्मी सा मौसम है। और जबकि मौसमी समाचार की ओर देखा जाए तो कल भी गर्मी सा मौसम होने वाले है। कल मिडक टेम्परेचर शाम का टेम्परेचर तुसा 38 एंड 40 ग्राड होने वाले हैं, जबकि हम देखते हैं हाँ हो सकता है कि लेमबर्ग में वहां पर 41 ग्राड भी हो सकता है और उत्तरेख हॉलैंडीज के बीच में 38 ग्राड। और खास तो बढ़ाने वाले हैं शनिवार टेम्परेचर भी काफी गर्मी सा मौसम होगा, टेम्परेचर भी काफी ऊंचा रहेगा 37 तक और कहीं कहीं 39 तक खराब होने वाले हैं और धूप खूब अपना काम करेंगे। फिर भी आप सभी सुन वालों को खूबसूरत सुहाना दिन पेश किया जा रहा है लेकर वर्म वीर नतीजा हमारा मुकेश एनाश।

पुरानी फिल्म नागिन का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, अभिमान फिल्म का नाम सॉन्ग।

और रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है 25 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक कामों काज के लिए आपकी फरमाइश हुआ, तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम हुआ, जो भी कामों काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, आपकी सभी कामों काज बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। एक बार फिर से किशोर कुमार होगा साथ में आशा भोसले।

वर्षा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म आनंद आसरम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो की जरिए भी सुनाई देता है पूरा के पूरा हॉलैंड देश के बीच में मेडर नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो की जरिए भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड लता आसपास फिल्म का गाना पेश होगा। 1980 का फिल्म आसपास फिल्म का नाम।

रेडियो SBS की संगे मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हजारों भी थे फिल्म आसपास का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में और सुनकर काफी पसंद किया है। 9 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में नई खमनुटन फोर 3 स्टूडियो तय गर्मी सा मौसम और रेडियो SBS की सरिये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अरमान था हमें जिनका एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म औलाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब कई बार एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में द माइटी मुकेश की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए यसुदास की आवाज में ये खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में 10:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। 7 मिनट ओवर 3 स्टूडियो टाइम और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं और ऐप पर भी सुनने वालों जोर जोर से ऐप भेज रहे हैं। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। मॉरिशस में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, वहां पर दुष्यंत हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। ओपरा हाउस फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में। देखो मौसम क्या बाहर है।

फिल्म ओपरा हाउस उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक फिल्म जो 1961 में 1961 में रिलीज किया गया है और इसी तरह से मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अब की बार डबिंग भी अमिताभ बच्चन का एक खास फिल्म की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिस फिल्म का नाम सत्य पे सत्ता। एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है। फिल्म सत्य पे सत्ता, इसी फिल्म में डबिंग भी अमिताभ बच्चन अब जो खान से यही कहते हैं, दारू पीने से लीवर खराब होता है। आशा भोसले, किशोर कुमार, एरदे बर्मन, राहुल देव बर्मन,

बिग बी अमिताभ बच्चन का फिल्म, फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता। इसी तरह से गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा भोसले, किशोर कुमार, एडे बर्मन, भूपेंद्र और साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। इस वक्त हॉलैंडीज के अंदर स्टूडियो के अंदर भी 13 मिनट बाकी है सुबह 10:30 बजे। शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, खासतौर पर

इस वक्त हमारा प्रोग्राम अरुणेश सुनते हैं, शुभ दिन पूरा परिवार को भी, और रेडियो वेस्ट पे इसका प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी सुनने वालों बस ऐप किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के ऐप के लिए। राजन गिरधारी दुद्रक शहर के अंदर में गिरधारी स्थान पर हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, ऐप भी किया है। आनंद और गोविंद आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है, और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना। सभी जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, ऐप भी किया है। रोटरडम शहर की रहने वाली है शीला, फोरबर्ग से सोनिया, चंद्रा भोला सिंह फेल्थोवन शहर से, हारोल्ड निवहाइन शहर से, सबीना रोटरडम शहर से, एन नतुलको अभी अभी ऐप अंदर आया है, सिंथिया सुखु ओकनहेलपुर मोरखा। शुभ दिन आप सभी के लिए, लेकर लेकर मीठा मीठा स्काफ है, गर्मी सा मौसम है, लेकर स्काफेस होट दर बाय ऐसे है ना। सभी

Sjoerdien, Janneke, Ramon en Anjali uit Rotterdam. ये लोग भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हमेशा भी सुनते हैं, मुलाकात जो जब भी होते हैं तो हमेशा ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। मैंने कहा ना, ऐप जोड़ तोड़ से अंदर आते हैं, कमला भी प्रोग्राम सुनते हैं दनहाग शहर के अंदर में।

सुनते ही रहना, और हमेशा हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं लेलिस्तात शहर में शलिनी सलीनी जगाई। हाँ, सलीनी जगाई भी हमेशा रोजाना भी ऐप करते हैं, और उनकी माता श्री भी रोहिमा एट लेलिस्तात, सभी जो ऐप किया है हेलफिल एप्स साइन बिन अनहेल मोय दाख, सभी को शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है, याराना फिल्म का नाम, एक और फिल्म जिसमें द बिग बी अमिताभ बच्चन ने काम किया है।

किशोर कुमार के आवाज में गाना पेश की गए याराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, बाहर गर्मी सा मौसम है, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, इस वक्त जबकि हम देखते हैं तो यूत्रेख्त शहर के अंदर में टेम्परेचर जो है 28 ग्राद है, और स्टूडियो के अंदर 22 ग्राद हम देख रहे हैं इस वक्त, 22 ग्राद है स्टूडियो के अंदर, जबकि बाहर इस वक्त सुबह की वक्त तकरीबन 29 ग्राद है, लेकिन टेम्परेचर जो है काफी जल्दी जल्दी काफी ऊपर की ओर जाने वाले हैं, तो 35 और 38 ग्राद 35 और 38 के बीच में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और वो भी किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से ये आवाज जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है 40 साल से ज्यादा, आने वाले अगस्त महीना में एनन फिर तैयार हो चुके हैं, जबकि हमने ये रेडियो SBS का प्रोग्राम यूत्रेख्त शहर के अंदर में शुरुआत किया।

बंदी था और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। 1920 फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम लव स्टोरी, अमित कुमार और आशा भोसले प्रोग्राम में। लव स्टोरी फिल्म का गाना पेश होगा अमित कुमार एंड आशा जी की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एंटोफे शहर के अंदर में राज भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। राज आपको भी अन हेल खुद मोर्ख शुभ दिन पेश।

फिल्म लव स्टोरी है, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए अमित कुमार और आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई, सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए, फिर से आपको हम खबर कर रहे हैं कि इस साल मिलन समर फेस्टिवल 21, 22 en 23 augustus होने वाले हैं सुइडोपार्क Den Haag शहर के अंदर में 21, 22 en 23 augustus सुइडोपार्क Den Haag शहर के अंदर में मिलन होगा, मिलन समर फेस्टिवल। हर एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होता है milansummerfestival.nl, द ईर्स्ट एंड द ग्रोथस्ट। ऑनलाइन डीज के अंदर में मिलन जो है सबसे पहला और सबसे बड़ा मिलन, मिलन साइड पार्क Den Haag शहर के अंदर में फोर ग्राम फॉर ह्यूर एंड टिकट आपको जाना है मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर। अगर आप एक ग्राम एक्सटेंड भाड़ा पर लेना चाहेंगे कोई भी सामान आप बेचना चाहेंगे, आपके पास बद्राइव है, कोई भी सामान आप बेचना चाहेंगे यहाँ पर, या तो कोई भी सामान आप प्रमोट करना चाहेंगे तो जरूर ग्राम फॉर ह्यूर के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए। वेबसाइट की जरिए मिलन समर फेस्टिवल .nl और उसी वेबसाइट के जरिए अपना टिकट भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मत भूलना 21, 22 और 23 अगस्त मिलन होगा, मिलन समर फेस्टिवल साइडो पार्क Den Haag में, जरूर और जरूर वहां पर मुलाकात होगा। चले प्रोग्राम में किशोर एंड लता, प्रोग्राम में हमारा रेडियो वेस बीएस का एप पर एक सुनने वालों ने गुजारिश किया, कहा मौसम इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है तो ये गाना जरूर होना चाहिए। पराया धन फिल्म का नाम, किशोर एंड लता।

जुदा होना बस मुश्किल है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना भी आपने सुना, पराया धन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सच कहिए कि पुरानी गाने में जो प्यार की खुशबू निकलते हैं वो नई फिल्म में नहीं होते हैं। चले एक गाना और किशोर और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। 10 मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है। आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों बस प्रोग्राम

जाता है ठीकी आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। शेडू ट्रैक से रेडियो वेस्ट में इसका ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आपके साथ इस वक्त इस गर्मी सा मौसम में हजारों हजारों सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। सूरीनाम देश में भी हेलन भी ऐप किया है प्रोग्राम हमारा, इस वक्त सूरीनाम देश में सुनते हैं। और वैसे सूरीनाम देश में इन दिनों बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो रेडियो वेस्ट में इसका ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा लेकिन एक पाकिस्तानी फिल्म का गाना अब की बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में। तुम्हें प्यार किए जाएंगे हम,

सलाम बेबी स्पीक आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, इतनी सी बात है गाना कबूल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म प्रेम अगन के बाद फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

Udit Narain और पूर्णिमा के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। प्यार कोई खेल नहीं है, उसी फिल्म का ये गाना अब की बार पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

है। बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुरेश भटकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में सोनू निगम एन श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

सर, ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.net। चले प्रोग्राम में सोनू निगम, महालक्ष्मी आयर और साथियों की आवाज में एड फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

इसमें ये गाना पेश किया गया, ये फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

का गीत पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। लाइव की सर ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चलिए फिल्म डाक की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 1952 का फिल्म, फिल्म का नाम डाक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए है। लता मंगेशकर के बाद मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। 1963 का फिल्म, फिल्म का नाम गहरा दाग। आज उड़ता हुआ एक पंछी, मर

मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म का नाम गहरा डाक आज उड़ता हुआ एक पंछी। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में ताकि हर एक रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुने। ऐसे रोजाना हजारों हजारों सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, फिर भी हर एक को खबर करते ही रहना रेडियो SBS के बारे में। गाना जो अबकी बार पेश होगा लता मंगेशकर की आवाज में, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ, तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम जो आपको देना है, हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर 03265656064 uur per dag ये टेलीफोन नंबर आप सभी के लिए बराबर होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे। अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है घराना। उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

मेरा साया जहां पर भी हूँ सजना। पाकिस्तानी मूवी घराना का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है कन्हैया, उसी फिल्म का ये गाना सुनते ही रहना।

जहां डॉक्टर मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में, और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम ताज महल।

बदमाशुरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था ताज महल, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब की बार एक गाना फिल्म अपना देश उसी फिल्म से बस पेश किया जा रहा है, द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा भोसले की आवाज में। आशा भोसले की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

रेडियो SBS के जरिए आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म अपना देश, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा जी के बाद लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन वालो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुली रामलाल, दी यू फहार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कैन इट ऑलटाइम सर्व मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस मेट द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशामदर अखिल सचदेव वेंकम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कंठ खुशामदर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान, मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

चिराग के दिल मेरा गुड़िया चली इस किस्म उधर बेनी दियाल अनमोल मलिक एंड अनु मलिक दे सकेर अत क्वाम आउट द फिल्म हंगामा 2 गाँव दा फर्दर मेट हमेशा तेरे साथ रहूँगा आउट द फिल्म कृष्णा कॉटेज किस्म उधर कमाल खान।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग दो अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाँ तो फैदर मैथ जुबेन नोटियाल मैथ आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

कुछ रपट जाए तो हमें ना बुलाइयो, इस अवध फिल्म नमक हलारन इस गुसों दोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh, Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sipne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara si baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम द फिल्म जवाने जाने मन एंड द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है. इसका सॉन्ग दोराल का याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव. एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कौम्त. बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता.

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहाल इश्क।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज़ में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज़ में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर। मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai.

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आर डी बर्मन, लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वासुदेव लीजे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कॉम्स खजानदार शान एन रोचाक, तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, वॉज आउट द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड आउट द फिल्म लव मैरिज कम्स गीता दत्त। करीब आओ ना।

0: achter de gemeente.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना।